0: ओके ठीक है, अभी
1: दूध को
0: दूध कोक वो कहते हैं शक्ति आ जाएगी और ठंडक भी आएगी।
1: हाँ, शक्ति आएगी और ठंडक भी आएगी।
0: हाँ, अब बताओ कौन सा गाना सुना रहे हो
1: अभी? भिक्की कौशल का एक गाना है।
0: ओके वाओ।
1: बैड न्यूज करेगी एक पिक्चर है।
0: बैड न्यूज ओके।
1: उसका गाना है जानम।
0: जानम जानम देख लो।
1: नहीं, वो वीर जरा का गाना है। बहुत अच्छा गाना है।
0: नहीं, वो उतना अच्छा नहीं लगा रहे हम
1: नया कुछ
0: सुनने की कोशिश कर रहे हैं। ओके
1: ऑलराइट।

0: तो ये गाना मतलब ठीक है, इट वॉज वेरी स्लो.
1: आई लाइक द सिंगर.
0: हु इज द सिंगर?
1: बहुत ट्रेंड में आजकल.
0: क्या नाम है?
1: विशाल मिश्रा.
0: ओके.
1: मुझे इसका आवाज अच्छा लग रहा है.
0: क्यों?
1: वो अपनी आवाज को बहुत अच्छे से मॉड्यूलेट कर पाता है.
0: ओके. मतलब डिपेंडिंग ऑन द सॉन्ग, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सॉन्ग.
1: यप.
0: वाओ.
1: और मेरे को ऐसा लगता है.
0: तूने अभी तक कौन से उसके वो देखे हैं रिजल्ट? मतलब कौन से उसके ऐसे वो देखे हैं गाने?
1: देखे
0: मतलब सुने?
1: सुने. अच्छा. आवर बिलवेड रणवीर कपूर.
0: ओह माय गॉड.
1: उनकी एक पिक्चर आई थी, एकदम बलती पिक्चर आई थी.
0: बलती?
1: हाँ.
0: कौन सी?
1: एनिमल.
0: ओह या दैट वाज बलती. व्हाटएवर बलती इज.

0: animal is balti.
1: That's what I'm saying. Yeah. Ki whatever balti is, it actually sounds ki it yeah. is apt for that movie.
0: Yeah. Us picture mein ek gana.
1: Theek.
0: Gaane ka naam hai Pehle Bhi Main. Romantic gana.
1: Haan, Pehle Bhi Main. Haan, haan. Yaad hai mujhe.
0: Nice song.
1: Achha song hai wo.
0: Achha gana.
1: Wo inhone gaya?
0: Yeah, wo inhone gaya.
1: Achha. Vishal?
0: Mishra.
1: Mishra.
0: Okay. And there is this one song, matlab naya gana nahi hai, bahut purana bhi nahi hai, but samajh le 3 or 4 saal purana rahega. And I kept feeling that ye gana Arjun Kanungo, there is this artist, singer, pop artist, usne gaya hai.
1: Acha.
0: And I kept feeling ki yaar sahi hai agar Arjun ne gana gaya to achhi baat hai, good. Matlab mereko pata nahi tha wo Bollywood mein bhi gana gaata hai. He is actually a wo angrezi gaane banata hai, hindi bhi gaata hai, but western
1: mein zyada hai.
0: To mereko laga tha sahi hai, theek hai, but nahi. That song was also or is also sung by Vishal Mishra. So Vishal Mishra reminds me of Arjun, and Vishal Mishra also reminds me of Ash King. But jab hi I listen to Vishal Mishra, I like listening to Vishal Mishra.
1: Okay. Matlab usi ke song sunne ka bar bar man karta hai?
0: Nahi, aisa nahi bolunga. It's just that like I said, wo modulate bahut acche se karta hai.
1: वो एक एक वर्ड को समझता है
0: ये बोलोगे आप हाँ
1: और अब मतलब ऐसा होता है कि कुछ सिंगर्स जो होते हैं वो गाना गा रहे हैं और कुछ सिंगर्स जो होते हैं वो गाने का जो मीनिंग है उसके इमोशंस के साथ मतलब इमोशंस के साथ गा रहे हैं तो द मीनिंग कम्स आउट वेरी वेल
0: देयर इज दिस वन थिंग व्हिच आई डोंट रियली लाइक अबाउट mainstream movies या movie के गाने
1: अरे हाँ आजकल तो
0: नहीं there is this one particular thing और ये ऐसा नहीं कि अभी से ही हो रहा है ये बहुत पहले से हो रहा है I don't know why that is कि कोई एक अच्छा सिंगर है उससे गाने गवाएंगे फिर उसी के गाने चलते रहते हैं ठीक है वो गाने बहुत अलग अलग के गाएगा अलग टाइप के गाएगा but for a period of say 5, 7, 10, 12 years, बस उसी के गाने चलते रहते हैं। गाने बहुत अच्छे होते हैं। इसीलिए तो वो ट्रेंड में रहता।
1: Exactly.
0: And then suddenly वो फिर बंद हो जाता। And then some singer. And then suddenly
1: he takes a break ना?
0: नहीं। And then suddenly a new singer is in trend now. जैसे
1: I don't know
0: अब जैसे थोड़े टाइम पहले तक मोहित चौहान वाज एवरीवेयर ठीक है उसके बाद में अरिजीत सिंह वाज एवरीवेयर ठीक है अभी अरिजीत सिंह इज नॉट दैट मच उतना ट्रेंड में नहीं है ठीक है जितना पहले था ठीक है अभी विशाल मिश्रा का ट्रेंड शुरू हो रहा है मेरे को ऐसा लग रहा है अभी तक आया नहीं है वहां पे
1: पर जैसे तूने बताया ना कि वो जैसे गायब हो जाते हैं थोड़े टाइम बाद
0: एंड इट्स इट हैज नथिंग टू डू विद द सिंगर्स
1: इट इज टू डू विद देयर
0: इंडस्ट्री राइट द माय क्वॉर्म इज और ये मैं पहले बोल चुका हूँ माय क्वॉर्म इज मेरे को ऐसा लगता है कि अ गुड सिंगर डेवलप्स with his age his singing matures with his age
1: I would say the same for an actor
0: kyunki
1: artist ho na aap
0: right
1: to aapko seekhna padta hai aapko break lena padta hai
0: ha abhi jaise KK theek hai wo jab bhi aaya tha tabhi wo jis tarah se gana gaata tha theek hai and then towards the peak matlab absolute peak the Imran Hashmi phase उस तरह से वो वाले गाने उसने जिस तरह से गाए हैं वेरी डिफरेंट बट देन यू कैन सी कि हाउ ही हैज मैच्योर्ड पहले भी ऑफ कोर्स पहले भी

0: अच्छे गाना गाता था, बट देन द सिंगर डेवलप्स अ फ्लेवर, राइट?
1: और एक यू नो जो उसके श्रोता होते हैं, तो उसको सुनने वाले होते हैं, वो पहचान जाते हैं,
0: राइट?
1: और उनको समझ में आता है कि अभी क्या इमोशंस है. इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि एक सॉन्ग में ऑफ कोर्स सब कुछ जरूरी है, म्यूजिक भी बहुत अच्छा जरूरी है, लिरिक्स जरूरी है, बट जो मुझे ऐसा लगता है कि जो सिंगर होता है ना, जो भी चाहे वो कोई भी लैंग्वेज में गा रहा हो, बट यू कैन समहाउ अंडरस्टैंड द इमोशंस.
0: यस, इसीलिए काफी बार काफी सारे गाने दो अलग सिंगर से गवाए थे.
1: अच्छा, जस्ट टू एक्सपेरिमेंट.
0: हाँ, ये नहीं पता, एक जस्ट टू एक्सपेरिमेंट और व्हाटएवर, बट होता है ऐसे, बहुत बार होता है. और दोनों गाने बहुत फेमस होते हैं. ऑन टॉप ऑफ माई हेड मेरे को अभी याद आएगा तो मैं याद दिलाता हूँ, एक सलमान खान की पिक्चर थी लकी.
1: हाँ हाँ, याद है मुझे.
0: ठीक है, उसमें थी स्नेहा उलाल,
1: लकी लिप्स, एक गाना भी था उसमें.
0: तो उसमें एक गाना है, सुन जरा
1: सुन जरा.
0: ठीक है, वो दो सिंगर्स ने गाया, एक सोनू निगम ने. ठीक है, तो पहले सोनू निगम का फेमस गाना.
1: अच्छा,
0: ठीक है, लेकिन ये ज्यादा पॉपुलराइज किया ही नहीं गया था, या फिर हुआ नहीं था, या फिर मेरे को मालूम नहीं है कि सेम गाना अदनान सामी ने
1: भी गाया है.
0: आई पर्सनली प्रेफर अदनान सामी का गाना.
1: ओके,
0: आई डोंट नेसेसरीली लिसन टू अदनान सामी सॉन्ग्स, वेरी टैलेंटेड सिंगर अगेन, बट दैट पर्टिकुलर सॉन्ग I prefer listening to the Adnan Sami version.
1: ऐसे बहुत सारे, नहीं ऐसा पहले भी होता था, ये तो बहुत सारे, बहुत पुराना ट्रेंड है.
0: हाँ,
1: कि अलग अलग सिंगर से गवाओ और देखो कि, क्योंकि हर किसी का पिच अलग है,
0: correct.
1: हर किसी की आवाज अलग है और लोगों को पहचान में आती है.
0: हाँ, तो the point that I was making is कि ये जो अब फ्लेवर निकालते हो ना, ये 10 साल हम खाली मोहित चौहान को सुनेंगे.
1: हाँ.
0: और उसके बाद में अपन खाली अरिजीत सिंह को सुनेंगे. और उसके बाद में अपन खाली विशाल को सुनेंगे. और उसके बाद में अपन खाली सोनू को सुनेंगे. Rather than doing this, why not have them sing at the same time? अरिजीत सिंह को नहीं गवाने का मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि
1: he should remain in the scene.
0: हाँ, he should remain, he should stay in the scene. Right. That is how, that is what my point is.
1: But no, they do stay in the scene. वो थोड़ा break लेते हैं.
0: नहीं, किधर? Where is Mohit Chauhan? Tell me the
1: last. अभी हाँ. Actually, Mohit Chauhan, हाँ, सही बोल.
0: Tell me where is Sonu Nigam?
1: Sonu Nigam. Oh, he has disappeared. That's correct.
0: वही तो मैं कह रहा हूँ. तो it is not the singers.
1: But he was a very, उसका voice बहुत ही unique था.
0: अभी भी अच्छा
1: है.
0: हाँ, अभी भी काफी अच्छा है.
1: हाँ.
0: अभी भी he is very talented.
1: तो
0: ऐसा नहीं बोल सकते अपन.
1: तो फिर आप
0: हमें
1: तो आप हमें कौन सा सॉन्ग सुना रहे हैं?
0: अभी मैं कौन सा सॉन्ग सुना रहा हूँ? ओके, कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 3 आई है.
1: 3 आ गई है?
0: हाँ, 3 भी आ गई.
1: चलो, गुड.
0: तो अभी नहीं है,
1: टाइम पास
0: हो गया उसको. टाइम हो गया अभी उसको.
1: अच्छा, टाइम भी हो गया.
0: हाँ, टाइम भी हो गया उसको.
1: गुड, टाइम
0: पास. उसका गाना है, और उसका गाना है जानम समझोना.
1: समझोना, ओके.
0: तो अपन वो सुनेंगे और उसके बाद में अपने को रैप मारना पड़ेगा.
1: अरे क्या बात कर रहे हैं, टाइम हो गया.
0: हाँ, टाइम हो गया है. तो अगर गाना फिट होएगा तो मैं फिट करेगा, अगर फिट नहीं होएगा तो मोस्ट लाइकली वो गाना अगली बार बजेगा. तो मनवाटू, धन्यवाद फॉर लिसनिंग टू अस. और थोड़ा बाहर निकलो, थोड़े रंग देखो,
1: ऑटम के रंग देखो, पतझड़ के,
0: ऑटम के रंग देखो, सेल्फी वेल्फी निकालो. ऑलराइट, सो थैंक यू वेरी मच शिल्पी जी आज मिलने के लिए.
1: थैंक यू मल्हार जी, और थैंक यू मनवाटू. फिर मिलते हैं हम अगले हफ्ते.
0: फिर मिलते हैं अगले हफ्ते.
1: ओके, बाय.